तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

बिग 106.2 पर दिस इज द बिग बिंज, वो शो जो वीकेंड का आपका हार्ड अर्न टाइम बचाता है। यार मतलब बड़ी मुश्किल से तो आपको वीकेंड मिलता है, दो दिन मिलते हैं, पांच दिन काम करने के बाद हाँ उसको इस काम में थोड़ी वेस्ट कर दोगे कि क्या देखें क्या नहीं, इसी सोच मोच में आप वेस्ट कर दो। नहीं, आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन। आई वॉन्ट टू सेव यू सम सीरियस टाइम एंड टेल यू कि क्या देखें क्या ना देखें। वी फोकस ऑन OTTs एंड देयर कॉन्टेंट, यानी कि इट कुड बी OTT शोज, कुड बी OTT फिल्म्स। आज हम बात करने वाले हैं about the show that everybody is talking about, Vikrant Masi starrer Musafir Cafe on Netflix. क्या अच्छी बातें हैं क्या बुरी बातें हैं, कितनी अच्छी कितनी बुरी, और इसको finally stream करें या skip करें, all that coming up right here on the Big Binge with me, Sid.

Big 106.2 पर दिस इज द बिग बिंज एंड वी टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स मुसाफिर कैफे द शो दैट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एंड या इट स्टार्स विक्रांत मसी लाइक यू नो वेदिका पिंटो एंड महिमा मकवाना साथ में आदिल हुसैन है राजीव सिद्धार्थ एंड और भी सपोर्टिंग कास्ट के मेंबर्स हैं वेरी गुड सपोर्टिंग कास्ट बाय द वे स्टोरी फॉलो करती है चंदर को इट्स प्लेड बाय विक्रांत मसी जिसकी लाइफ ना इट गेट्स पुल्ड बिटवीन टू वेरी डिफरेंट इमोशनल वर्ल्ड्स एक तरफ है सुधा The intense, almost love from his past, and दूसरी तरफ है प्रीति, the steady partner जो उसके present में. It's set between Bhopal and Mussoorie, relationships, second chances, and a hill cafe dream. ये जो show है ना, it's arrived with a decent pre-release curiosity also because एक तो ये दिव्या प्रकाश दुबे की popular novel पे based है, और दूसरा क्योंकि विक्रांत मसी जब भी कोई शो करते हैं कुछ काम करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि यार विक्रांत मसी ने हाँ करी है तो अब तो भाई शो अच्छा होगा ही राइट ही इज दैट एक्टर हु रियली मेक सम वेरी गुड स्क्रिप्ट चॉइसेस सो हाँ यू कैन एक्सपेक्ट लव एक्सपेक्ट लॉन्गिंग्स माउंटेन्स अनरिजॉल्व फीलिंग्स एंड लॉट ऑफ वॉट इफ लाइफ हैड गॉन अनदर वे काइंड ऑफ एनर्जी If you prefer mountains to beaches, this is the show that you must watch, right? Coming up next, what are the good things about Netflix ka Musafir Cafe? Keep it locked. This is The Big Binge with me, Sid.

वी आर टॉकिंग अबाउट मुसाफिर कैफे ऑन द बिग बिंज। यार नेटफ्लिक्स का वो शो जो हर कोई बात करे इसके बारे में, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है, देखें कि ना देखें। आई एम सेविंग यू योर टाइम ऑन द वीकेंड, बेस्ट थिंग। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द रियली गुड थिंग्स अबाउट मुसाफिर कैफे। हाँ, द बेस्ट थिंग अबाउट मुसाफिर कैफे बाय फार इज द शो का मूड। आई मीन, इट्स नॉट ट्राइंग टू बी द थिंग्स दैट यूजुअली ओटीटी शोज दीज डेज ट्राई, राइट? लाउड, शॉकिंग, ट्विस्टी, ये कुछ ट्राई नहीं कर रहा है। इट्स अ सॉफ्ट स्लो बर्न रिलेशनशिप ड्रामा। विक्रांत मसी ब्रिंग्स दैट क्वाइट लिव्ड इन परफॉर्मेंस दैट ही इज सो वेल नोन फॉर, राइट? और ये एक बंदा ऐसा है जो कंफ्यूजन, गिल्ट और टेंडरनेस को भी ही कैन मेक इट फील वेरी रियल विदाउट ऑल द शाउटिंग। वेदिका पिंटो गेट्स नोटिस्ड एज सुधा, फ्री स्पिरिटेड वुमन शी प्लेज हु लीव्स अ मार्क। महिमा मकवाना इसमें है, शी ब्रिंग्स अ वेरी यू नो काम प्रेजेंस एंड सैनिटी एज प्रीति। मसूरी की सेटिंग इज ब्यूटिफुल, कैफे एटमोस्फियर है, इमोशनल कॉन्वर्जेशन दैट गिव द शो अ सूदिंग ऑलमोस्ट रेनी डे वॉच, के मतलब हाथ में चाय, सामने टेबल पे पकौड़े पड़े हैं, बाहर बारिश हो रही है और ये शो टीवी पे चल रहा है, तो मजा आ जाएगा। इफ यू लाइक स्टोरीज अबाउट ओल्ड लव, ओल्ड फैशन लव, अनफिनिश्ड चैप्टर्स, पीपल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दे एक्चुअली वांट फ्रॉम लाइफ, थोड़ा फिलोसफी एज वेल, देन दिस शो हैज अ लॉट ऑफ वार्मथ। इट्स द काइंड ऑफ सीरीज दैट यू डोंट बिंज फॉर प्लॉट ट्विस्ट्स, डोंट लुक फॉर प्लॉट ट्विस्ट्स, बट यू बिंज इट फॉर द फीलिंग। यार वहां मसूरी के पहाड़ों में पहुंच गए तो मजा आ जाएगा आपको। कमिंग अप नेक्स्ट, व्हाट आर द नॉट सो गुड थिंग्स अबाउट मुसाफिर कैफे on the big bench with me, Sid.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

बिग 106.2 पर दिस इज द बिग बिंज। We've been talking about Musafir Cafe Netflix ka wo show starring Vikrant Massi that everybody is talking about, but bahut confusion hai ki whether you should stream it or skip it. I'm going to try and make things a bit simpler and save some of your time, right? So we spoke about the really good things about Musafir Cafe, and now it is time for the not so good things. Dekho, let me just be upfront and blunt. Pehla episode aap dekhoge na, 90% chances that you'll say kar yaar bhai कुछ हुआ ही नहीं इसमें, तो बस कुछ हुआ ही नहीं, वी जस्ट सॉ बिट ऑफ मसूरी, थोड़ा सा भोपाल, एंड दैट्स अबाउट इट। मतलब यार, अ शो कैन बी जेंटल बट दिस इज मे बी अ बिट टू जेंटल, पेस इज स्लो, एंड कभी कभी ऐसा लगता है ना कुछ शोज को देख करके, यार ये 8 एपिसोड क्यों बनाए, इट कुड हैव बीन अ टाइटर फिल्म, थोड़ा सा मेहनत करके, क्रंच करके अच्छी खासी फिल्म बन सकती थी इस टॉपिक पर। ऐसी फीलिंग अगर आपको आए तो मुझे याद करना, इट्स एन 8 एपिसोड सीरीज एंड द राइटिंग ऑल्सो इज प्लेइंग इट अ बिट सेफ। मतलब लव ट्राइंगल कितने मैसी होते हैं, मसी नहीं मैसी होते हैं, एंड दिस वॉज लाइक क्वाइट अ सेफ बिनाइन काइंड ऑफ अ थिंग, कुड बी मच शार्पर, राइट? एंड फेमिलियर ट्रोप्स आपको दिखेंगे, माउंटेन कैफे ड्रीम, वो प्यार, ओह दैट कुड हैव बीन, अगर वो मेरी जिंदगी में होती तो मैं वैसा वाला जो ऑलरेडी डन टू डेथ हो गया है, ये सब के बारे में बात होगी। द वन दैट गॉट अवे, इमोशनली कंफ्यूज्ड मैन, व्हाई डज द मैन ऑलवेज हैव टू बी कंफ्यूज्ड, कैन यू प्लीज टेल मी? एंड सो इफ यू वॉच अ लॉट ऑफ मॉडर्न हिंदी रिलेशनशिप ड्रामास, दिस माइट फील स्लाइटली प्रेडिक्टेबल, क्योंकि दिल तो है, इट्स गॉट अ हार्ट, बट यू माइट फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट टू फाइंड अ हार्ट बीट इन दिस, यू नो, इफ यू कंपेयर इट टू कॉफी। हाँ, कॉफी में क्या होता है कि कभी कभी ब्रू तो अच्छी हो जाती है, बट देन पीने के बाद लगता है कि यार ये थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग होती ना तो ज्यादा मजा आता। ऐसी फीलिंग आपको मुसाफिर कैफे के साथ आ सकती है। दीज आर द नॉट सो गुड थिंग्स अबाउट मुसाफिर कैफे। और हाँ, यू हैव टू वेट टिल एपिसोड 7 टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये सारा कुछ जो माजरा था ये एक्चुअली क्या था। एपिसोड 7 out of 8 episodes, दैट्स लीविंग इट अ बिट टू लेट। सो कमिंग अप नेक्स्ट, बताओ भाई सिड, देखें कि नहीं देखें, दैट वर्डिक्ट, स्ट्रीम इट और स्किप इट, कमिंग अप राइट हियर ऑन द बिग बिंज।

बिग 106.2 पर दिस इज द बिग बिंज Netflix का मुसाफिर कैफे. अब इट्स द मोमेंट ऑफ रेकनिंग. इट्स नाउ टाइम फॉर मी टू रिवील वेदर यू शुड स्ट्रीम इट और स्किप इट. मुसाफिर कैफे, आई'ड से स्ट्रीम इट ओनली इफ यू आर इन द राइट मूड. क्या होता है ना कि कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि आपको एक इत्मीनान आराम वाला शो चाहिए, ऑलमोस्ट लाइक ठंड के टाइम पे एक रजाई टाइप का एक शो जिसमें ज्यादा बूमा बाम ना हो. राइट, इफ यू एक्सपेक्टिंग अ फास्ट थ्रिलर, बिग ड्रामा, कॉन्स्टेंट क्लिफहैंगर्स, तो भाई छोड़ दो, ये वो शो नहीं है. अगर आपको कुछ स्लो, इमोशनल, रोमांटिक, रिफ्लेक्टिव चाहिए, मतलब एक क्वाइट वीकेंड चाहिए. बहुत तमाशे हो गए यार, मतलब बॉस की सुन सुन के परेशान हो गया हूं. नाउ आई नीड सम मी टाइम. चाय, रेन वीडियोस फ्रॉम इंडिया, फैमिली ग्रुप, इफ यू नो इनटू ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स, देन यू माइट लाइक दिस शो. हाँ, थोड़ा नॉस्टैल्जिया टाइप का ये शो भी है. विक्रांत मसी, इफ यू आर बिग फैन ऑफ विक्रांत मसी, देन यू कैनॉट मिस दिस शो, बिकॉज वॉच इट फॉर द परफॉर्मेंसेज, दे आर क्वाइट गुड. अगर आप मसूरी कभी नहीं गए हैं, भोपाल कभी नहीं गए हैं, तो डेफिनेटली यू माइट लाइक एंजॉय द सेटिंग एज वेल. एंड या स्किप इट अगर आपको कुछ शार्प, फास्ट, अनप्रेडिक्टेबल या ट्रूली बिंज वर्थी चाहिए. ये वो शो है कि ऑफिस में थोड़ा टेंशन बढ़ गया ना, तो एक आधे एपिसोड देख लिया, चलते फिरते एपिसोड आप देख सकते हो. इट्स दैट काइंड ऑफ अ शो. एंड या सो इट्स अ सॉफ्ट वीकेंड वॉच, नॉट अ नॉकआउट. इज दैट वार्म कप ऑफ कॉफी विद अ फ्यू बिटर नोट्स. Sit getting poetic. आप बताइए अगर आपने ये शो देखा है, what do you feel about it? You can always send me a WhatsApp 054-309-1062. This is the Big Binge with me, Sid.

0: brand new one suddenly viral फिर से हो गया ये social media पे on number 39 this week. इसी के साथ talking about independent गाने, ये गाना तो सारे record तोड़ ताड़ चुका है. When I talk about independent songs, this is अनुव जैन की आवाज.
1: इश्क में तेरे है फैज बने.
0: From Coke Studio, भारत on number 38.
2: Number 40.

0: viral songs from Coke Studio Bharat. We've got Anup Jain ki awaaz, who's very popular amongst the Gen Zs. This week on number 38, playing you the top 40 biggest hits of the week. Ye hai Big Bollywood Countdown. Main hoon Mansi. Arz kiya hai, even after almost a year, still a very viral gana. And ye Coke Studio Bharat ke liye Anup Jain ne compose kiya tha in collaboration with Lost Stories. And millions of downloads hai is gaane ke. Aisa ye ek aur gana is hafte in the top 40. Thanks to social media, bahut hi viral hai. Even after months and years of release, a lot of celebrities also recreated a lot of content on this very song. But usse pehle, is hafte bhi number 37 pe Shanaya Kapoor, Gaurav Adarsh. Moving on to number 36, we've got a fantastic Haryanvi gana jo itna viral ho jayega thanks to TikTok and Instagram. In fact, it has been dominating social media for almost a year now. We've got Mit Arora with this one on number 36. लिखा और कॉम्पोज भी मित अरोर ने किया है एंड साथ में गाया है स्वरा वर्मा ने. थैंक्स टू सोशल मीडिया, स्टिल वेरी पॉपुलर एंड वेरी रेलेवेंट ऑन नंबर 36.
1: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड, बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने.
3: दो या चार?
2: चार.
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही, यहीं 4-5 दिन में.
3: चार या
2: पांच?
3: पांच.
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन. ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा. द बिग बिंज विद सिड. प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ.
1: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Bollywood Countdown, Big 106.2, the beat of Bollywood. Number 37.

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: द मॉन्डल ब्रदर्स इतना वायरल हुआ कि रिक्रिएट किया गया है बादशाह ऑफ कोर्स द वन हु फाइंड्स दीज वेरी वेरी कूल लोकल आर्टिस्ट एंड गिव्स देम अ प्लेटफॉर्म बाय रिक्रिएटिंग देयर ओन सॉन्ग्स On number 35 from Pati Patni aur Wo Do, जो मुझे बहुत अच्छी लगी. It is such a fun movie. I mean, इसे कब से हम entertainment में logic ढूंढने लगे. It's pure comedy. It's pure fun. So yeah, if over the weekend you want to watch something light, something entertaining, it has to be Pati Patni aur Wo Do. Especially Vamika Gabbi and Ayushman Khurana, they are brilliant also. Tigmanshu Dhulia, मजा आ जाएगा आपको. तो 100% मैं recommend करती हूँ a nice फील गुड मूवी. हम उस जमाने से हैं जिन्होंने हेरा फेरी अंदाज अपना अपना 20-20 बारी देखी है. तो रिव्यूज पे मत जाओ. द मूवी इज फैंटास्टिक दिस वीक ऑन नंबर 35. मूविंग ऑन, प्लेइंग इन द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक. ये है बिग बॉलीवुड काउंटडाउन. मैं हूं बांसी ऑन नंबर 34. We've got विशाल मिश्रा. एक साल हो गया है सैयारा को, फिर भी गाने आज भी सुपर डुपर हिट एंड पार्ट ऑफ टॉप 40. इसी के साथ फ्रॉम मेट्रो इन दिनों 33.
1: दिल जला के
0: बड़ा अंडररेटेड एल्बम है ये.
1: मुस्कुराने की जो आदत हुई.
0: सी, लाइफ इन अ मेट्रो हैड ब्रिलियंट म्यूजिक एंड सो डिड मेट्रो इन दिनों. अरिजीत सिंह की आवाज साथ में अमिताभ भट्टाचार्य दिस वीक ऑन 33.
2: This is the Big Bollywood Countdown.
3: All the music I love.
2: The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 34.

0: गाने रिलीज हुए हैं फ्रॉम टॉक्सिक एंड आई हैव टू से वेरी कबीर सिंह फील्स एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज ऑफ 2026. Playing you the top 40 biggest hits of the week. Mansi, hope you're enjoying your weekend right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. People are saying the only movie that might break Dhurandhar the franchisee ke records is Yash ki Toxic. Ab maine KGF nahi dekhi hai, to mujhe honestly nahi pata tha ki Yash is such a big star. I saw the first song and like everyone, I started googling Yash ki kaun hai ye good looking ladka jise main nahi janti. So yeah, I read about him and he's a massive star. The movie is anticipated as one of the biggest release of 2026. Massive budget, 1,000 crore ka budget jo hai is movie ka tha, and it is hitting the theaters on the 26th of August. मूवी को डायरेक्ट करा है गीतू मोहनदास ने, स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश, हु इज प्लेइंग राया इन द मूवी. देर इज तारा सुतारिया, देर इज कियारा अडवाणी, हुमा कुरेशी, नयनतारा, तो काफी कमाल स्टार कास्ट है. कांट वेट फॉर दिस वन. फिलहाल मूविंग ऑन नंबर 30 वी हैव गॉट विशाल भारद्वाज मधुबंती बागची विद From Oh Romeo. इसी के साथ number 29 again, a movie that is getting a lot of good reviews from Baby Do Die Do. लीजो जॉर्ज ने रिक्रिएट कराया ओरिजिनल गाना, अनु मलिक का कंपोज किया हुआ अलका याग्निक की आवाज. Right here playing in the top 40 hits of the week. Stay with me, I'm Mansi. This is Big 106.2.
1: Number 30.

0: नंबर 29।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

brand new entry, Rekha Bharadwaj ki awaaz from Musafir Cafe over the weekend. If you want to watch something good, then I highly recommend you watch the show. Vikrant Masi, I think he's blessed. And अगर आपका भी दिल कभी टूटा है, आपने प्यार में किसी का इंतजार किया है, you have to watch this show. In fact, अगर आपने भी मेरी तरह सोचा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों पे एक कैफे खोलते हैं, this show is for you. It's a brilliant, brilliant show. कहानी है चंदर मोहन शर्मा की, प्लेड बाय विक्रांत मसी, जो एक इंजीनियर हैं, बट उनके ड्रीम्स कुछ और हैं. उनकी लाइफ एक ड्रास्टिक टर्न लेती है व्हेन ही मीट्स सुधा, जो इंडिपेंडेंट डिवोर्स लॉयर है. एंड डिस्पाइट देयर कंप्लीटली ऑपोजिंग व्यूज ऑन कमिटमेंट एंड मैरिज, द टू फॉल इनटू एन इंटेंस passionate love affair that eventually breaks apart because of their conflicting priorities. मैं आपको spoilers नहीं दूंगी. It's a beautiful, beautiful show. And over the weekend, if you have no plans, watch this show. Moving on to number 16, a song that is been very, very consistent. A.R. Rahman, Irshad Kamil. We've got this one from Tere Ishq Mein. इसी के साथ और नंबर 15,

तीन पोजीशन डाउन पिछले हफ्ते ये गाना जो है नंबर 12 पे था, इस बार 15 पे आ चुका है फ्रॉम धुरंधर 2। नंबर 16।

On number 7, we've got Ucha Lamba Kad Forever from Welcome to the Jungle. Right here on Big 106.2, playing you the top 40 biggest hits of the week. Main hoon Mansi, ye hai Big Bollywood Countdown. Welcome to the Jungle, also known as Welcome 3. मैसिव मल्टी स्टारर बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी जिसे डायरेक्ट करा है अहमद खान ने, प्रोड्यूस किया है फिरोज नाडियाडवाला ने. दिस इज द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ द पॉपुलर वेलकम फ्रेंचाइजी. मूवी ऑफिशियली रिलीज हुई थी ऑन द 26th of June एंड ग्रेट रिव्यूज कमिंग इन. रवीना टंडन, अक्षय कुमार मेकिंग अ कमबैक ऑन द स्क्रीन टुगेदर आफ्टर एजेस. इनफैक्ट नॉट अ स्पॉइलर, बट दलेर मेहंदी का भी एक स्पेशल अपीयरेंस है इस मूवी में. सो या, बहुत सारे मिक्स रिव्यूज हैं, बट मैं कहती हूँ हमने ओरिजिनल वेलकम भी एंटरटेनमेंट के लिए देखी थी. अब 2026 में इफ यू स्टार्ट लुकिंग फॉर लॉजिक इन एंटरटेनमेंट एंड इन एंटरटेनर्स, इट विल नॉट मेक सेंस. गो एंड वॉच द मूवी फॉर द फील्स, फॉर द वाइब, फॉर द फन, एंड इट विल डिलीवर. इस हफ्ते on number 7, that was Welcome to the Jungle se Ucha Lamba Kad. Moving on to number 6, we've got again Shashwat Sachdev and Khan Saab.

0: इसी के साथ नंबर 5 पे रॉक स्टार यश एंड साथ में कियारा आडवाणी. द सॉन्ग इज गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन ऑन सोशल्स बिकॉज ऑफ द वीडियो, बट आई हैव टू से इट्स अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट सॉन्ग. द हिंदी वर्जन गाया है विशाल मिश्रा ने. One of the most anticipated movies of 2026 कह रहे हैं कि धुरंधर का रिकॉर्ड अगर कोई मूवी तोड़ सकती है वो होगी यश की टॉक्सिक. रिलीजिंग दिस अगस्त इस हफ्ते ऑन नंबर 5.
1: दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन.
2: ऑल द म्यूजिक आई लव.
1: द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड. बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड. Great news, Ajman! A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop. The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 6.

नंबर वन से नंबर टू और इस हफ्ते सीधा नंबर तीन पर धुरंधर टू से आरी आरी, which is such nostalgia for us millennials, Bombay Rockers ka Aari Aari that we used to listen to on loop apne MP3 players mein is back thanks to Dharandar 2 and Shashwat Sachdev. Is hafte number 3 par maine kaha na number 1 se number 2 pe aaya. This week on number 3 playing you the top 40 biggest hits of the week. Ye hai Big Bollywood Countdown, main hoon Mansi. And number 1 consistently 2 hafte रहा है ये गाना फ्रॉम कॉकटेल 2, बट दिस वीक गाना पहुंच चुका है नंबर 2 पर. वी हैव गॉट माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2.

इनफैक्ट जो गाना नंबर वन पे है, जब ये रिलीज हुआ था तो बहुत ट्रोल किया गया था सोशल मीडिया पे, ऑडियंस ने बहुत क्रिटिसाइज किया था इस रीमेक को, बिकॉज ओरिजिनल गाना जो है वो अनबीटेबल है. इनफैक्ट ओरिजिनल गाने में सलमान खान भी थे, एंड रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने मस्ती में कहा कि वरुण धवन जो है वो कॉन्स्टेंटली मेरे पुराने हिट गाने रिक्रिएट करता है. बट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया ट्रोलिंग दे से राइट एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, एंड वरुण धवन व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम अबाउट दिस सॉन्ग ही सेड दिस इज नॉट फॉर मिलेनियल्स, दिस सॉन्ग इज कंप्लीटली रिक्रिएटेड फॉर जेन ज़ीज. Gen Z's are loving the gana. The vibe is hafte number one pe from hai Javani to Ishq Hona hai. Chunari Chunari 2.0. Right here playing you the top 40 biggest hits of the week. Main hoon Mansi. Main aapse milti hoon ab agle hafte with the top 40 hits. But weekdays pe I meet you 5 se 9 with the big thrill. Until then, do not forget to follow us on socials. 106.2 Big FM it is. You can say hi to me. I'm Mansi talking. Have a great weekend. Stay right here. Number 40.

0: इस हफ्ते के 40 सबसे धमाकेदार हिट
1: Countdown. Here we go.
0: सिर्फ बिग 106.2 बीट ऑफ बॉलीवुड पर.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: नमस्ते,
2: ओला,
1: अस्सलाम वालेकुम,
3: बोंजूर,
4: नी हाओ।
3: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: नमस्ते,
2: ओला,
1: अस्सलाम वालेकुम,
3: बोंजूर,
4: नी हाओ।
3: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: नमस्ते.
2: ओला.
1: अस्सलाम वालेकुम.
3: बोंजूर.
4: नी हाओ.
3: डिड यू नो नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.